कुद्रकवन का विचार भरी न जावे एक बार ज्योतिर पावे साई बलिकार थू सराव सलाम निरंकार संक जाप संक पाओ संक पूजा संक तपताओ संक क्रान उग्वेद पार संक जग मन रे उदास संक भगत कुं ज्ञान विचार संक सत्य संक तत्तार संक सर्म बक्सार संक मन लिवलाई तार कुदर कवन का विचार बरे न जावे एक बार ज्योतिर पावे साई बलिकार तू सरा सलाम निरंकार असंख मुरक अंधकोर असंख छोर हरम कोर असंख अमर कर जाय जोर असंख कावर हते कमाय असंख पपी पाप कर जाय असंख रियार करे फराय असंख मलेच मा बकाय असंख निंदक सिर करे बार नानक नीच काहे विचार बरे न जावे एक बार ज्योतिर पावे साई बलिकार तू सरा सलाम निरंकार असंक नाभ असंक ताप अगम अगम असंक लवा असंक है सिर पार हुई अक्री नाम अक्री सलाह अक्री ज्ञान गी कुंगाओ आक्री लिखन बोलन बान आक्र सिर संजोग वकान चिन्ह लिखे ठिसर नाय जिप और माय टिप टिप पाय चेतक तत नाओ बिन नावे नाही कोठाओ कुदरत कवन का विचार भरे न जाब एक बार ज्योतिर पावे साई बलिकार तू सरा सलाम निरंकार बरिया हाथ पैर ठंडे पानी धोते उतरस के मुट पलीती कापर होई ते सबुन ले यो दोई परिया मात पापा के संग ओ दोपे नावे के रंग पुनी पापी आकन आए कर कर करन लिख ले जाओ अपे बीज अपे ही काओ नानक हुक्मी आवो जाओ तीर तप त्या दतन चेको पावे तोक मन सिनिया मनिया मन की तप आओ अंतर का तीर माओ नाओ सब गुन तेरे में ना ही कोई बिन गुन की ते भगत न होए स्वास्तात पनी बरमाओ सात सुहान सदा मन चाओ कावन सुवेला वकत कावन कावन ते कावन वार कावन सिरुति माओ कावन चित हो आकार भल न पाय पंडिती जी हो वे लेख पुराण बकत न पाय करिया जी लेखन लेखरान तित वार न जोगी जानी रुतमा न कोई जा करत सिरति काव सजे आपे जाने सोई केव काराक केव सलाई क्यो वर्णी केव जानन नानक आकन सब कवाके एक तु एक सियाना बद्दा साहिब बदी नाय कीता जाको होवे नानक जेको आप जने अके ज्ञान असोहे पताल पताल लक अगास अगास ओरक ओरक पाउत के बेद कनक पात सहस अतर कन कतेबा असलु एकता लेक होई ता लिक ये लेके होई बिनास नानक बड़ा अक्य आपे जाने आप सलाही सलाही एती सुर न पाया नारिया अते बाप वे सुमुन न जानिया सुमुन शाह सुल्तान गिरा सती मदान कीरी तो नव नीच स्मरण विसरे अंत न सिफ्ति के न अंत अंत न करने देना अंत अंत न बेकन सुन न अंत अंत न जपे क्या मन मंत अंत न जपे किता आकार अंत न जपे पार बार अंत कारण कहते बिल्लाय ताके अंत न पाए जाए एहो अंत न जाने कोई बहुत कहे बहुत होई बदा साहिब ऊंचा ताओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ ए बार ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे का जाने सोई जय बराब जाने आप नानक नदरी कर्मी दात बहुत कर्म क्या न जाए बदा दाता तिल न थमाए कहते मंगे जोड़ा पार कहते गण नहीं विचार कहते खाप तुते बेकार कहते लल मुकर पाए कहते मुर काही काही कहते दुख भुख सद मार ए भी दात री दातार पंद कलाशी बने होई और आक न सके कोई जय को खाए आकन भाई ओ जाने जत्या मई खाए अपे जाने अपे दे अके शि भी के खे जिस नो बख्शे सिफत सलाह नानक पच शाय पच शाओ
Amolagun, Amobapar, Amobaparia, Mobandar, Molaba, Molajai, Molabai, Mosamai, Amoldaram, Amoldiban, Amoltol, Amolparban, Amobakshi, Shimonishan, Amolkarma, Amolforman, Amlo mol akena jai, ake akra heleblai, ake be papuran, ake pare kre vakyan, ake parme, ake inda, ake gopi tagovinda, ake ishara ake sid, ake kete kite bud, ake danav ake dev, ake surna munjan sev, kete ake akan pai, kete ke ut ut jai, E te ki te porkere, ta akna sake ke ke. Je vira bave, te vira hoi, nanaka jana satcha soi. Je ko ake bolvikar, ta likya sir, gabar gabar, so dar ke ha, so kar ke ha, jit basar of samale. Vaje nad, aneka sanka, ke te vavana hare. Kete rag parisio kanya kete gavanahare gave tu no pound panibe center gave raja darum duare gave chitkupat lik janin lik lik darum vichare gave ishar brahma devi swan sras vare gave indidrasan bete devtia darnale gavin sid smadi under gavana sadvichare Gavana jati sati santoki gave virkarare Gavana pandit paranaki sara jug jug verenale Gave moinya manmohan surgamach peale Gavan ratanu paitere atsatire nale Gave jod mahabhasura gave kaninchare Gave kan manda varbanda karkarake dare Se tu no gavin, jotirubavin, rate tere, bugger rasale. Horke te gavin, se mechit na avin, nan kya vichare. Soi, soi, sara, such a saib, such a suchi nai. Habi hosi jaina jasi, rachna jinra chai. Rangi, rangi, bati, karkar jinsi, maya jinu pai. Kar karveke kita apana jutis di variai. Jotis bhavi soi karsi hukam na karna jai. So pacha sha pasaiv nanakrahan razai. Munda santok sharmpa choli dhyan ki kare vibhut. Kenta kau kraya kaya jugat danda parti. Ai panti sagal jamati manjite jagji. Ades tisi ades. Adanila nadanaha jug jug eko ves. Bhugakyan dea bandaran gat gat vachanad. Abnat nati sabjaki ritsir abrasad. Sanjog vijog due karchla veleke ave bag. Ades tisi ades. Adanila nadanaha jug jug eko ves. Eka mai jugat vyai tinchle parvan, ik sansari, ik pandari, ik laidiban, jiv dispave, divich lave, jiv hove forman, obeke ona narana ave bote evidan, ades tisi ades, adanil anaranaha, jig jig eko ves, asan loi, loi bandar, jokich paya svekavar, Karkar veke sirjan har, nanak sachi ki sachikar, ades tisi ades, adanil anad anaha, jujuk eko ves, ektu jupau lakovi, lakvis, lak gera akiek nam jagdish, erai papavaria chariahoekis, sungala kashki kita airis, Nanak nadri paya kurde kurde tis Akana jor, chupe na jor, jorna mangan tena jor, jorna jivan marana jor, jorna raj maman sor, jorna surti gyan vichar, jorna jukte chute sansar, jis ha jor karveke soi, nanak utam nijna koi, rati ruti titi var, pavan pani agni patal,
Te svich darti tapraki darum sal. Te svich jia jugakeran. Tim kenam anek anant. Karmi karmi hoi vichar. Sacha ap sacha darbar. Tite soan punch parvan. Nadri karam paban ashan. Kach pakai ote pai. Nanak gaya jape jai. Dharam khan ke o dharam. Gyan khan ka ako karam. Kete pavan panivesantar, kete kan mahesh, kete parme gare kariya ruprang keves, kete karam bumir kete, kete tu upadesh, kete inda chansur kete, kete mandal des, kete sidpudnad kete, kete devi ves, kete dev danamun kete, kete ratan samunda, Ketya kani, ketya bani, ketya patnarind, ketya surti seva, ketya nanak antana ant, gyan kan me gyan parchan, tite nad binod karanan, sharam kan ki bani rup, tite karik karyabhotanup, takya gala katina jai, jekok hai piche pichtai, tite karya surat matman bud, tite karya sura sura kisut, Karam kan ki bani jor, tite hor na koi hor, tite jod mahabasur, tin me ram rehabar poor, tite sito sita me mamai, take rup na katne jai, no mere na tage jai, jinkeram basaman mai, tite bagat baske loa, kara anan sachaman soi, sach kan base nirankar, kar karveke narnahal, Tite kan mandavar band, cheko kate ta ant na ant, tite loa loa akar, chip chip hukum tibe tib kar, veke vikse karvi char, nanak katna karar asar, chapare dirashaniar, hernamat bed hatyar, baukala agan taptau, bandabau amre titau, kariya shabed sachi taksal, Jinkal nara karam tinkar, nanaka nadri nara nahal. Shlok, pavana guru pani pitta, mata daratmat, divis ratoi daya daya kele sagala jagat, changiya ya briyaya bache dharmadur, karmi apo apani ke nereke dur. Jinni nam diaya gema shakatagal, nanak te muk ujale, keti chuti na. Jinni nam diaya gema shakatagal, nanak te muk ujale, keti chuti na. Vaigarji ka kalsa, vaigarji ki fate. We'll start our Kundalini yoga. Get in.

0: प्यारे में जिन्हें मिलिया तेरे नाम चित आवे नानक नाम चढ़ी कला
1: चढ़ी कला
0: तेरे पाने
1: सर्वत ताबला
0: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बच्चे बच्चे चरिया तेरे खावन बुलावे खावन चलावे मरनो सुमन करिया सब दान दस स्थान ठाकुर करता दरिया जन नायक बल बल सुत बो जाए तेरे तेन पर वारिया राधा समय वो चौथा सो पुरित तिकों का सकुर प्रसाद सो पुरित निरंजन हर पुरित निरंजन हर आगम आगम अपार सब दियावे तुझी हर सच्चे सृजनहार सब जिय तुम्हारे ही तुझिया का दतारा हर दिया हो संतोषी सब दुख को विसार न हारा हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी के नाम के जंत विचारा क्यों कट कट अंत सर तरंत जी हर एक को पुरख समाना एक दाते एक भटक कारे जी सब तेरे चोरी बढ़ान जो आपे दाता आपे भुगता जी हो तुझ में आप न जान तू पर ब्रह्म दयांत दयांत जी तेरे किया गुण आत्म खाना जो सेवे तुझ जी जन नारक तें कुर्बाना हर दिया वे तुझी से जनजक में सुख वासी से मुकित पे जिन हर दियाया जी के तुती चंपी फासी जिन निर्वो जिन हर निर्वो दियाया जी के खाबो सबुद वासी जिन सेविया मेरा जी ते हर हर रूप समासी से दान जिन हर दियाया जी जन नानक के बल जासी तेरे भगत पंडार जी भरे बेअंत बेअंत तेरे भगत सलाह तुझ जी हर अनेक अनेक अनंत तेरी अनेक तेरी अनेक यार पूजा जी तक तपे जपे भी अंता तेरी अनेक प्रियो सिमत शास्त्र जी कर क्रिय कट कर्म कर अंता से भगत कले जन नानक जी जो भावे मेरे हर वक्त भगवंता तू आज पूर का परम को करता जी तू जेग आवरण कोई तू जग जग एक ओ सदा सदा तुए को जी तू निच करता सोए तू रापे भावे सोए बढ़ते जी तू आपे करी सो होए तू रापे शिष्य सब पाए जी तू आपे श्री सब गोए जन नान कुंगा वे करते के जी जो सबसे खाजन होए आ समय लचोता तू करता सचिया मैदा साए जो तो बावली सोए तिसी जो कि दही सो पाए राव सब तेज तू सब मिटियाया जिस नौके पा करे ते नाम रतन पाया गुरमुख लाजा मरमुख बाया तू आप बिछोड़ी आप मलाया तू दरिया सब तू जी ही माए तुझे मिले तुझे कोई नाए जी जन सब तेरा के उन जोग में बिछोड़ी संजोगी मैं जिस न तू जानी सो जन जाने हर गुण सति आत्म खाने जिन हर से के ते सुख पाए सहज ही हर नाम समाए तू आपे करता तेरा के सब होए तुझ बिन तुझे आवर न कोए तू कर कर ले के जाने सो जन ना तुम कर कत होए आसन न पहला हित सुगाड़े गए निवास पाए पावत बिन तिनकी किया पंकज को पगे नाही चले हम देख दे रबियाले मैं एक न चेत इस मुड़ मरान बिसर तेरे में गलिया रहा ना हो जती सती मैं ही परिया मत मत मत दाचे मबाईया प्रण दाखना तेरे की सरना जिन तू ना ही बसरिया आसा मेला पंचवा दे प्रभात कर दे हरिया गोविंद में किए तेरी परिया आवर काश तेरे की तन खान और साध संग मत बज खेल ना सरंजन लग बज तन के जन वृत जतन नमाया के रहा जब तब संजन करना कमाया से सब न जाने हर रैया को नान कमरी चुकरमा संघ रे की राह पसरमा वाई सी वाई गुरु जी की पते तेंते चौपे हमरी प्रोहा तेर चा पूर्ण होई जी की इच्छा तब चंदन में है हमरा अपना जन प्रो कित पारा हमरे जिस सुबह तुम गावो आप हाते मोर बिचावो सुखी को से मोरो परवारा सेवक से सुबह करतारा मोरिश करते खरी है सब बेन को ऐसा करी है पूर्ण हो है हमारी आशा तूर बज की रहने की आशा तुम ही चाहो को अपना दियो जो बार चाहो सो तुम दे पाओ सर से तुम्हारे करी है चुन चुन सुत हमारे मरी है आप हाते मुझे बड़ी है मन खा खा प्रश्न करी है पूजो सदा हमारे कुछ ऐसी अश जो करी और अच्छा राख ले मोई राख नहाए साहब संसहाय प्यारे दीन बंद दुष्ट के हंत्रा तुम को पुरुष कंत्रा कल पाए ब्रह्म भक्त दरा कल पाए
मृगों में विचार विसार के कुछ विचार से फिर सुजा प्रति संसार एके रूप अनुप स्वरूप राम करपाय प्राप्त ना भूपा अंतर्जेल से तस्कीनी उपवास का हो चुकीने कौन फुराज रहे बेटा को सुनपाय संतर केटा सभी शिष्ट काय चन बाबा विराट स्वरूप से अनुभव आप राजा ने रिक्त मकरो से उबार से संगरो इस जिते उठवा उठपाता सकमलाश प्रवर नगाता जय श्री स्तर सर निकरे तेरे के जुच के कितने मरे पूरे जन्म करे तो हारे तेरे के तुम सब सबकारे जो काल का बार दिया है ताके काल में ने है राजा वो एक आय सब कला दुष्ट सारे अकर डाले के काला कृपा दृष्ट न जाए हर हो ताके कातन को मार हो रेत से डर मत सब हो दुष्ट चाचा के सकना कोई एक बार जन तुम इस द्वारा काल पास से ताई उबार जिन नर नाम दहर कहा दर दुष्ट दो के रहा कर केट ने सर दहारी आप हाथे ले उबारी सर्व तोर मोहो सहाय पुस्तक ले उबारी पुस्तक ले उबारी सया बाए पाए के चमते चुमारे तबते गवां करे ना यानियो राम रहीम पुराण पुराण ने कयम है एकना मानियो सिमरत शास्त्र वेद सबे बोबेज तेज बोबेज